स्वागत है आप सबका रेडियो एडिलेड 101.5 एफएम रिच एंड रियल पर। यह है आपका प्यारा प्रिय भारती हिंदी कार्यक्रम जो आपके लिए प्रसारित होता है हर महीने में प्रथम रविवार पर दोपहर 1 से 2 बजे तक। जैसे आप जानते हैं रेडियो एडिलेड पर बारी से महीने के रविवारों पर दोपहर के समय हिंदी, बांग्ला, गुजराती और पंजाबी भाषाओं में प्रसारण होते हैं, ये भी आप जानते होंगे ज़रूर। इन चार भाषाओं के क्रम से जैसे मैंने अभी बताया है, यानी पहले रविवार पर हिंदी, दूसरे पर बांग्ला, तीसरे पर गुजराती और चौथे पर पंजाबी कार्यक्रम। और हाँ, ये बताना तो भूल ही गई थी कि मैं शंपा आपकी होस्ट और दोस्त हूँ आज की प्रस्तुति के लिए। और आज का प्रोग्राम है सदाबहार, एवरग्रीन और बिल्कुल संगीतमय, क्योंकि ये शो इसलिए बना है कि इसे साल में कभी भी सुनाया जाए। जब अचानक ऐसी कोई स्थिति आई कि कोई वार्तालाप, कोई समाचार या ज्ञान या विज्ञान या कला को लेकर कार्यक्रम नहीं बन पाया हो, ढेर सारे बातचीत वाले, तो किसी विशेष कारण से ऐसा नहीं हो पाया है, बातचीत वाला कार्यक्रम नहीं बन पाया है इस रविवार को, लेकिन कोई फिक्र नहीं दोस्तों, ऐसे ही समय पर सुंदर मौका बन जाता है हमारे हिंदी फिल्मी गीतों के खजाने से आपको चुन चुन के कुछ श्रेष्ठ गीतों को सुनाने के लिए। तो आज आपके लिए शानदार 60s के गीत लाई हूँ अपनी झोली में भर के, आपकी यादों को जगाने वाले हिंदी फिल्मों के गाने ही गाने, सुपर शानदार 60s के गाने। तो आइए शुरू हो जाएं। हाँ जी, तुरंत।

सुंदर दो गाना सुना अभी आपने, किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी की आवाज में। गीतकार यानी लिरिसिस्ट थे शैलेंद्र जी और म्यूजिक दिए हैं इसे सचिन देव बर्मन जी। 1965 की बेहद लोकप्रिय फिल्म गाइड का ये पॉपुलर गाना था, आप जरूर सुने होंगे इसे पहले भी। हाँ, तो हम चल पड़े हैं इसी के साथ 1960s के दशक में बने हुए हिंदी फिल्म जगत के कुछ बेहद आकर्षक गीतों को सुनने के लिए। आइए अब आगे सुनते हैं एक सदाबहार प्रेम गीत मोहम्मद रफी जी की आवाज में। लिरिक्स है शकील बदायूनी जी के और म्यूजिक दिए हैं इसको रवि साहब ने, और ये गीत है 1960 में बनी हुई 14वीं कचान फिल्म से। तो आइए इसका

साल 1967, फिल्म हमराज, आर्टिस्ट महेंद्र कपूर जी, गीतकार सहीर लुधियानवी जी और संगीतकार फिर से रवि जी। आइए सुनते हैं ऑसम गाना, तुम अगर साथ देने का वादा।

दोस्तों, आज आप है रेडियो एडिलेड 101.5 के प्रभारती हिंदी कार्यक्रम पर शंपा के साथ। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया है, आज मेरे पास गीतों की झोली में बेहद सुंदर गाने हैं जो 1960s के दशक में बने थे। तो चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और इस श्रृंखला में अगला गीत सुनते हैं। बहुत सुंदर गाना, वो शाम कुछ अजीब थी। फिल्म है खामोशी 1969 की। गाए हैं इसे किशोर कुमार जी, लिरिसिस्ट हैं गुलजार जी और म्यूजिक डायरेक्टर हैं

फिल्म उद्योग की एक जानी मानी आवाज और बेहद लोकप्रिय आवाज। गाने का अंदाज उनका बहुत ही स्पेशल और बेहद सुहाना। जी हाँ, अब मैं आशा भोसले जी की बात कर रही हूँ। उन्होंने अनेक भारतीय भाषाओं में ढेर सारे गीत गाए हैं अपने लंबे कैरियर के दौरान और अनेक अनेक हिट सॉन्ग्स रचे हैं और हमारे दिलों को आनंद पहुंचाए हैं। तो आइए अब आशा जी की आवाज में सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा गीत। फिलोसॉफिकल गीत है ये और काफी लोकप्रिय गीत है, आगे भी जाने न तू। और क्रिएटिव टीम में फिर से नाम आते हैं रवि साहब और सहीर लुधियानवी साहब के। चलिए इस लाजवाब गीत का आनंद लेते हैं जो 1965 की वक्त फिल्म से लिया गया है। लेट्स एंजॉय।

सुंदर गीत सुने अभी आपने आशा जी की मधुर आवाज में, और आगे आपको जल्दी ही परोस रही हूँ एक और प्यारा सा गाना। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो। ये 1963 की बनी फिल्म एक दिल सौ अफसाने का गीत है। ढेर सारी यादें जुड़ी हुई है इस फिल्म के साथ। उस जमाने के दो श्रेष्ठ एक्टर्स राज कपूर साहब और वहीदा रहमान जी इस फिल्म में लीडिंग रोल्स पर थे, और इस गीत में आप सुनेंगे उस जमाने के एक बहुत ही निपुण प्लेबैक सिंगर की आवाज, मुकेश जी की कभी ना भुलाने वाली आवाज। संगीतकार शंकर जी जयकिशन जी की रचना है ये, गीतकार हसरत जयपुरी साहब के शब्दों पर।

मैंने पुकारा और हम चले आए रे। शानदार 60s की गाड़ी आगे छुट रही है इस गीत को लेकर। मूवी है राजकुमार, 1964 की फिल्म है ये। लाजवाब डुएट गाए हैं मोहम्मद रफी साहब और सुमन कल्याणपुर जी, और रचनाकारों की टीम में फिर से मौजूद हैं संगीतकार शंकर जी और जयकिशन जी, और गीतकार हसरत जयपुरी साहब।

संगीतमय गाड़ी चल रही है इस रविवार दोपहर रेडियो एडिलेड के प्रिय भारती हिंदी शो पर, और इसे चला रही हूँ बहुत ही उल्लास के साथ आज मैं शंपा। दोस्तों, आज यानी इस प्रस्तुति में हम ट्रैक पर हैं, पुरानी हिंदी फिल्मी गीतों की दिशाओं में, और बेशक आप इस यात्रा का भरपूर आनंद उठा रहे हैं, है ना? तो चलिए मैं अपनी बातें जल्दी से बंद करती हूँ और आपको एक मस्त मस्त मस्त गीत की ओर ले जाती हूँ। रूप तेरा मस्ताना इसका नाम है। ये गीत राजेश खन्ना जी और शर्मिला टैगोर जी पर दर्शाया गया था 1969 के बहुत ही सुंदर फिल्म आराधना के लिए, एस डी बर्मन जी के संगीत पर और आनंद बख्शी जी के शब्दों पर। और गीत को किसने गाया है ये तो सबको मालूम है, क्योंकि ये जादू भरा स्वर हम सभी के दिलों में बसा हुआ है। तो चलिए इस प्यारे वॉइस को एक बार और सुनते हैं।

आइए पलट के देखते हैं 1961 की फिल्म हम दोनों की ओर और मधुर डुएट सुनते हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी का गाया हुआ, संगीत है जयदेव जी का दिया हुआ और लिखे हैं इस गीत को रही लुधियानवी जी।

60s के शानदार पुराने गीतों की सिलसिला में आगे सुनते हैं फिर से किशोर दा को. गाना है ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, फिल्म तीन देवियां से जो 1965 में निर्मित हुई थी. एसडी बर्मन साहब और मजरू सुल्तानपुरी साहब हैं इसके म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट, और एक्टर्स देवानंद जी और नंदा जी इस फिल्म में भूमिका निभाए थे. तो इस सुंदर गीत को सुनते हैं और इन सब कलाकारों को याद करते हैं.

1968 में शम्मी कपूर जी ने एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म हमें दिया. नाम था इस फिल्म का ब्रह्मचारी. तो इस फिल्म के गाने बहुत ही पॉपुलर बने थे और इसमें से एक है ये डुएट आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे. रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी इसे गाए थे और संगीत दिए थे शंकर जी और जयकिशन जी ने और कवि शैलेंद्र जी इसके बोल लिखे थे. तो आइए हम सब मिलकर इस झूमता हुआ मस्त मस्त गीत का भरपूर आनंद लेते हैं और पुरानी यादों को जगाते हैं.

और इसी के साथ ही हम रेडियो एडिलेड 101.5 एफएम पर प्रिय भारती हिंदी प्रोग्राम के आखिरी पद पर पहुंच गए हैं और आपको आज के सभी गाने जरूर बहुत ही भाए होंगे। इन्हें मैंने बड़े ही प्यार और जोश के साथ चुना है आपकी यादों को जगाने के लिए भी और अवश्य आपके मनोरंजन के लिए भी। 1960 की फिल्म मुगले आजम हिंदी सिनेमा इतिहास की सफलतम फिल्मों में से एक है और इसका अनेक सुंदर गीतों में से एक गाना जब प्यार किया तो डरना क्या हिंदी फिल्म जगत के दिल को छू लेने वाले श्रेष्ठतम प्रेम गीतों में माना जाता है। अनारकली की भूमिका में मधुबाला जी गजब का अभिनय अदा की थी जो आज भी हमारे यादों में बसा हुआ है। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। शकील बदायूनी साहब के लिखे हुए ये सुंदर लिरिक्स नौशाद साहब की लाजवाब संगीत रचना और हम सब की प्यारी लता जी की मधुर आवाज आपके लिए परोसते हुए अब मैं शंपा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे जल्दी ही कभी, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: हाँ जी दोस्तों, तुसी सुनिया यह गीत सज्जन अदीप जी की आवाज़ दे विच, बड़ा ही प्यारा गीत, इश्कां दे लिखे गीत है जेड़ा कि तुसी सुनिया, बहुत ही प्यारा गीत है जेदे कि अज तक हुण तक 207 मिलियन इहदे व्यूज़ हो चुके हैं। तो इस गीत नूं सुनन तो बाद आई थिंक सारिआं नूं यह गीत बहुत वधिया लगता है। तो मैं हुण सज्जन अदीप जी का स्वागत करदी हाँ अपने स्टूडियो दे विच, इस प्रोग्राम दे विच ओनली तुहाडा बहुत बहुत वैलकम, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तो एडिलेड दे विच आउण वी आउण वास्ते तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच। तो साढ़े जगी भाई का जिन्हें करके मैं एडिलेड विच आया उन्हों का भी धन्यवाद, तो रेडियो सुन रहे सारे स्रोतों का धन्यवाद।
0: हाँ जी मेरे नाल एक्चुअली मैं दसना भुल गई, पहला नील शीरी जी साढ़े नाल जुड़े ने जेडे कि मेरे कोवर्कर ने, जे इन्हां ने अज नाल ही इंटरव्यू लेनी है मेरे नाल सज्जन जी दी। ते शुरुआत कर दी आपां अपने क्वेश्चनां दी। ते सज्जन जी मैं तुहानूं पुछना चाहनी हां कि तुसी तुहानूं किस तरह लगा कि जदों तुसी म्यूजिक दे नाल जुड़े, सब तो पहला तुसी कदों जुड़े सीगे, जिस तरह कि स्कूल दे विच तुहानूं किद्दां लगा कि हाँ मैनू म्यूजिक दे नाल जुड़ना चाहिए जां मैनू होबी है म्यूजिक दे नाल?
1: मैं अक्सर गल करता हूँ कि जिहड़ी आर्ट आ उहनूं तुसी बना नहीं सकते, उहनूं तुसी सिर्फ तराश सकते हो। तो कोई बंदा कलाकार बन नहीं सकता, वह कलाकार हुंदा ही आ। तो ये गॉड गिफ्टड जिन्हों कहने आप बहुत वड्डी गल हुंदी है, बहुत इंपोर्टेंस हुंदी आ। तो ये सब चीज़ा गॉड गिफ्टड सीगियां, तो असी मैं उन्हों तराश लिया, स्कूल टाइम तराश लिया, ज़्यादा यूनिवर्सिटी दौरान ज़्यादा तराशिया आपदे आप नूं। तो पिछों जिहड़ी वोकल आ, जो माइंड सैटअप आ, जो किसी चीज़ को सोचने का नज़रिया, वह मेरा शुरू तो इदा का सीगा।
0: ठीक है जी। जिस तरह कहते होंगे ना कि जो बंदा किसी काम की शुरुआत करते हैं विच फैमिली की सपोर्ट होना बहुत जरूरी आ, जो तुसी म्यूजिक दे नाल जुड़े जा गाना शुरू किया तो ताड़ी उस टाइम ते फैमिली की सपोर्ट किस तरह रही?
1: मैं अपनी फैमिली नू हमेशा ही कहना हूँ कि मेरी हमेशा उन्होंने सपोर्ट की आ, तो कदे भी यही नहीं किया कि इस काम में पैसा ये काम कर लग जा, क्योंकि हमेशा पेरेंट्स कहें कि जिहड़े काम में तुहानू बिजनेस दिंदा तां पेरेंट्स कहें कि वह काम कर लग जाओ। बट थोनों पता कि संगीत च कई बार कह देंगे कि घर फूक तमाशा, बट फैमिली ने मैंने कदे भी यह नहीं कहा कि तू ये काम ना कर, ये तू गाने ना गा, भी एक कलाकार का कुछ नहीं वटा जाता हों, बई आप लोगों को कहोंगे भी साडा मुंडा कलाकार। तो इदा की कोई भी गल नहीं सी फैमिली। तो मेरे ब्रदर सिस्टर मैं तो व्डे ने, तो वह बड़े एजुकेटड ने, पढ़े लिखे ने, उन्होंने मैंने बड़ी सपोर्ट की आ। तो जो मेरा दिल किया, जो मैं करना चाहिया, वह मैं किया।
0: बहुत वधिया गल है, फैमिली की सपोर्ट जिहड़ी सब तो वड्डी चीज़ हुंदी आ। कई बार इस तरह हुंदा ना परिवार दे विच जो कोई देख दिया कि हाँ लै मुंडा ते गान वाल चल गया जाए तां की कहिंदे हुंदे पेरेंट्स या इह किहड़े कम्मां च पै गया,
1: कई लोग।
0: हाँ जी, तो वधिया गल है कि तुहाडी फैमिली ने सपोर्ट की आ, तुहाडे ब्रदर सिस्टर तुहानूं सपोर्ट करदे आ। तो नीला श्री जी तुसीं कुछ पुछना चाहते हो इस टाइम?
2: हाँ जी, जिवें तुहाडी फैमिली ने तां वधिया सपोर्ट कीती, तुसीं वधे सी, फिर भी आपां जदों किसी काम की कोई शुरुआत करदे आं थोड़ियां औकड़ां तां आउंदियां ना आपां नूं, तुहानूं कीहड़ी कीहड़ी औकड़ां दा सामना करना पिया?
1: औकड़ां दा सामना मैं क्योंकि जदों इश्कां दे लेखे गीत असीं बणाए आ, मेरी हमेशा एक सोच सीगी, एक बंदे की जिहड़ी सोच हुंदी आ उह बंदे नूं कितें ना कितें जरूर कितें ना कितें अगे लैके जांदी। मेरी सोच सीगी कि मैं इदां दी चीज़ बनाउणी आ, कि मेरे मन च इदां दा सीगा कि मैं मेरे कोल दवाई इदां दी होनी चाहीदी आ कि लोग थोड़े कोल आउण बई यार आराम आउंदे नाल, मैनूं ना जाणा पवे किसे कोले।
2: हांजी,
1: ते मैं उह चीज़ ते बहुत वर्क कीता कि जदों मैं कोई चीज़ ही इदां दी बनाउणी आ कि मैनूं इह ना होवे कि मैनूं उह स्टेज ते खड़ के मौका मिले बई मैनूं टाइम नहीं दित्ता तुसीं, मैनू इदा ना सोचना पवे कि यार मेरे को मेरी तो कोई गल नहीं सुनता, मेरे को मेरा तो कोई म्यूजिक नहीं बना, मैं तो कंपनी का कोई पैसा नहीं दिता।
2: हाँ जी,
1: मेरी इदा की सोच नहीं सी, मैं क्या कि मैं प्रोडक्ट ही इदा बना, क्योंकि जिहड़ा जिहड़ी इंडस्ट्री है ना, बिजनेस आ, बिजनेस एक व्यापारी बंदा करता, तो व्यापारी बंदा उही आ कि जे उन्हों उस तो प्रॉफिट दिसदा।
2: हाँ जी,
1: तो मैं क्या जे मेरी चीज़ प्रॉफिट होगा तो मेरे चीज़ पर जरूर पैसा लाऊगा, तो मैं प्रॉफिटेबल चीज़ बनानी है। तो मैं कदे भी किसी को समा नहीं मंगया, कदे भी किसी को स्टेज से समा नहीं मंगया अज तक, ना मैं कदे किसी को यह किया कि मेरे ते पैसा ला दो, तो ना मैं कदे किसी नूं यह किया कि यार बई आ चीज़ असी बनाउणे आ, मैं किसी कंपनी के दरवाजे भी नहीं किया कदे, किया ये मेरी खुशकिस्मती ला लो, बाकी मेरी सोच ला लो, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ।
2: ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੇ ਜੋ
1: ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਗਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਊਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ।
2: ਮਤਲਬ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ,
0: ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਗੀਤ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਫੇਵਰਟ ਕਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?
1: ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਪਿਆਰੇ ਆਪਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੜਕੇ ਲੜਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਲੋਂ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਨੇ।
2: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ,
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਦੇ
1: ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ।
0: ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੁਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।

और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।